0: मानो।
1: ठीक है, तो मैं सारी रात यहीं रहूंगी। लोग मुझे उठाकर ले जाएंगे, तब आना। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी थी।
0: Get lost।
1: पक्का नहीं मान रहा?
0: हाँ, नहीं मानो, जो करना कर ले। घड़ी घड़ी ड्रामा करती है
1: राजा। ठीक है,